श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के हजूर अरदास है जी। चार पहर दिन आप जी दे भाणे अंदर सुख दा बतीत होया है, कोटान कोट शुक्र है रैन आई है अपने भाणे अंदर बतीत करवाउणी। अमृत वेले दे जागणे नाम दान इशनान दृढ़ करवाउणा। मीरी पीरी दे मालक बंदी छोड़ सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज आप जी के गुरता गद्दी दे

संपूर्णता उपरंत आप जी ने पावन श्री मुख वाक की बख्शिश की, आप जी दे सरूप की टहल सेवा हुई, सोहला साहब जी की बाणी का जाप होया है, बाणी पढ़द्या सेवा करद्या आप जी की हजूरी विच विचरद्या होईयां बेअंत प्रकार दियां भुलां दी मुआफी बख्शनी, अगे तो सुमत बख्शिश करनी। इस वक्त सेवादार संगत आप जी दे चरणा विच हाजर है, आप जी अपने सुंदर आसन उपर विराजमान हो के आराम फरमाओ, संगत नू खुशियां बख्शो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे गोर सिखी, सो थान पालिया लै धुर मुख लावा, धुर मुख लावा गुर सिखा की काल, थाए पई जिन्हा

तिनहार पूज करावा जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे विश्व

patriarca. Deg teg, pant ki, raj karega, chul te nishan rahe, lagte divan rahe, लागते दीवान रहे बोले सो निहाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अभंग है, अनंग है, अपीख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अवय है, अभूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, नचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अदिख है, अलेख है, अपीख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्वय प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नृसाकं श्रीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रवाह है अजय है अजा है भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करहीम है कि रोजी देहंद है कि राज करहिंद है करीमल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमल खिराज है गरीबल निवाज है हरीफल सिकन है हिरासल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवन है हमीसल रवन है तमामल तमीज है समस्तल अजीज है परंग परम ईश है समस्तल अदीस है अदीसल अलीख है हमीसल अपीख है जमीन दुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रवाह है कि अचलंग अनंग है कि अमितो अपंग है मद पहार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुपव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनसिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुपव अनास तृत धर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकार याद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजना बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनठट अपार अढीठ धर्म अत ढीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है तृत के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विशुंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपा जप है थप थप है कृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है कृता कृत है तरणी तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्नायक है खलकायक है विशुंभर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है

ते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करी मुलुक निंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करी अंग करी मुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा।

अपहंगंग बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सवैये। श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के। सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राणपति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के। मातिम तंग जरे जर संग अनुपो तंग सुरंग सवार। एक ओट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे। भारी भुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे। इति पहे तो कहा पय भूपत अंत का नांगे ही पाए पदहारे। जीत फिर सब देश दसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे। श्रीपद श्री भगवान पजीवन अंत को अंत के ताम सधारे। तीर्थ नान दया दमदान सो संयम नेम अनेक वसिख है। वेद पुराण कतिव कुरान जमीन जमान सभान के पेख है। पौन आहार जति जत तार समय सब चार हजार के देख है। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रतीबन एक न लिखे। सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनह दुर्जान दलेंगे। भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तुर अरीन मरोर मवासन मातिम तंगन मान मलेंगे। श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अविचार है सार की धार पशैया। तूर्त दे समलिंद मवासन मातिक जान के मान मलैया। गाड़े गडान के तोड़न हार सुबातन ही चकचार लवैया। साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन भाड़ जैत तुन पापन की बह पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फरे जग सतर सवै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नरादप जौंतर लोक को राज करेंगे। कोट स्नानक जादक दान अनेक सो अंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिसन सच्ची पत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस है भगते नर फेर न देह तरेंगे। कहा प्यो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो। नहात फिरे लिए सात समुन्द्रन लोक गयो परलोक गवायो। बास कियो बिख्यान सो बैठ कह ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सन लिहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज तरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लखियो हर अवाची दिशा में काहू पिशाह को सी सने।

जह महा पयान तब तब कहम जहा त्रिखामन तुझ आकर खे भक्त जना की बर्तन नाम हर का नाम दास की ओट हर जस करत संत दिन रात हर जन के हर नाम निदान मंतन रंग रति रंग एक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर का नाम जन का रूप रंग

अपनी गत मत जान हुआ पी तुमरी उस्तत तुम ते हुई सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया।

रतन त्याग को डी संग रच जो षट नसु अस्थिर कर मन छूट जाए तिसका श्रम करे चंदन लेपो तारे तो हुई अंधकूप में पतत विकराल करतूत पशु की मानस जात बाहर पीख अंतर मल माया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर अगन बाहर तन स्वाह जाके अंतर बसे।

जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकी जिह प्रसाद तुझको ना पहुचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ दी जिह प्रसाद भूखन पहरीज जिह प्रसाद असब हस्त असवारी जिह प्रसाद बाग मिलख तना जिन तेरी मन बनत बनाई किसह त्याए जो एक अलख है जिह प्रसाद करह पुन बहदान जिह प्रसाद तू आचार व्योहारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप जिह प्रसाद तेरी निकी जात जिह प्रसाद तेरी पत्र है जिह प्रसाद सुनह करन नाद जिह प्रसाद बोलह अमृत रसना जिह प्रसाद हस्त कर चल है जिह प्रसाद परम गत पाव है ऐसा प्रभु त्याग अवर कतलाग हो जिह प्रसाद तू प्रगट संसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे जिह प्रसाद तू पाव है साच जिह प्रसाद सब की गत हुए आप जपाए जपै सो नाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु सो प्रसन्न बसे।

ब्रह्म ज्ञानी सदानर लीप ब्रह्म ज्ञानी सदानर दुख ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर

ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदाहर ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी

ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पीद, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म

कई कोट पंखी सर्प पाई, कई कोट पवन पानी वे संतर, कई कोट शशिर सूर नक्षत्र, सगल सामग्री अपने

संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन सर्प जोन पाई, संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन तेज

0: दुख ना सुखते डरे।
1: संत के दुखी को नाही ठाउ,
0: नानक संत पावे ता लय बलाए।
1: संत का दुखी अद बीच ते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज ना पोछे।
1: संत के दुखी को ध्यान परमाहिए,
0: संत का दुखी
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा। संत के दुखी की जड़ किस नाही, संत के दुखी को अवरना रखन हार। संत का दुखी यो बिललाई, संत का दुखी

0: का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को दर के मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाई है,
1: संत का दुखी ना मरे ना जाए,
0: संत के दुखी की पूजा ना आसा,
1: संत का दुखी चले ना
0: आसा, संत का दुख ना त्रष्ट है कोई,
1: जैसा पावे तैसा कोई,
0: पया कीर्तन मिटे कोई,
1: नानक जाने सच्चा सोई,
0: सब कट इसके हो करना।

0: मानो की टेक वृथ्वी सब जान
1: को एक है भगवान।
0: जिसके दिए रहे अगाही मारे रखे एक आप जिसका हुकुम बूझ सुख हुई सिमर सिमर सिमर प्रभ सुई उस्त मन में कर निरंकार निर्मल रसना अमृत पियो नैनो पिखठा कुर का रंग चरण चलो मार्ग गोविंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा बड़ भागी ते जन जग माहि राम नाम जो करह विचार मंतन मुख बोल है हर मुखी एको एक एक पछान नाम संग जिस का मन मानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजय साध संग हर हर जस

जस सत सदृष्टाय सूदत सूदत सूदत सीजिया जब देखो तब सब किस मूल नह किस जन्मे नह किस मरे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आपे आप सगल में आप अविनाशी ना ही किस खंड अलख पिव पुरख प्रताप जिन प्रभ जाता सुसुभावंत प्रभ के सेवक सगल उदार।

जप जन सदा सदा दिन रहनी कर कृपा जिसको नाम दिया जाके मन गुर की प्रतीत भगत भगत सुनिए तिहलोई सच करनी सच ताकि।

चरण कमल से लागे प्रीत, एक ओट एक आधार, प्रभु की दृष्ट महासुख हुई, जिन क्या क्या से जान तृप्तानी, सुबर परे प्रेम रसरंग, परे शरण आन सब त्याग, बड़भागी जपया प्रभु सोई, सेवक की मनसा पूरी पही, जन को प्रभु हो यो दयाल, बंधन काट मुक्त जन पहया, इश्पुन्नी सरदास पूरी, जिसका सातन लिया मिलाई, सो क्या बिसरज काल न पहने, सो क्या बिसरज न सब कुछ दिया, सो क्या बिसरज अगन मह रखे, सो क्या बिसरज बिखते काटे, गुरपुरे तत एह बुझाया, साजन संत करो इहो काम, सिमर सिमर सिमर सुख पा।

जब तारी अपन सुन समाद जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत जब आपन आप पार ब्रह्म आपन

जब निर्गुण प्रभु सहज स्वभाव जब आप है आप अपनी जोत तरे आपन चरत आप करने हार अविनाशी सुख आपन आसन जब पूर्ण करता प्रभु सुई जब अवगत अगोचर प्रभु एक जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधी।

एक टेक रखो मन माही, तिस्ते दूर कहा को जाई। निरप जपे सगल पह मिटे, जिस प्रभ राखे तस नाही दुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा। मत पूरी अमृत जा की दृष्ट, चरण कमल जाके अनूप। धन सेवा सेवक परवान, जिस मन बसे सहोत ने।

आप ला कर दूत अत निकी आप साच धारी सब साच ताकि गत मत कहीं ना जाए किसका किया सब परवान जो जाने तो सदा सुख होए।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिऐ घर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख सब रूप जुगो जुग अटल।

कमल सुख संपट सहज घर निःचल मत एक टेक ठहराई है। चरण कमल गौर महिमा अगाध बोध सर्व निदान और सकल फलदाई है। जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक लोक अते परलोक सवार देन वाले सतगुरु दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जिंदगी दे कुछ पल सफल कर रही गुरु निवाजी साध संगत जीओ प्यार आदब सहत गुरपते परवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भागा नाल संगत दियां घड़ियां नसीब होईयां, संगत विच आया करोड़ां पाप दग्ध हो जांदे ने, पुन्ना विच वाधा हो जांदा है, पाप घटन लगते ने। काजी सलारदीन ने ना एक बार धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को एक प्रश्न पूछया, कहिंदा महाराज जी एक गल समझायो भी संगतां गुरु नूं मत्था टेकदियां ने, मत्था टेकण दा कोई फल है? गुरु नूं मत्था टेकण दा कोई फायदा हुंदा जी? पाछे कहिंदे बहजा भाई समझाउने आ, सामने बैठ गया दसमेश पातशाह जी ने ना जेब विचों एक स्टैंप जिहनूं मोहर कह दिंदे मोहर कढ़ी, कढ़ के उहदे वल नूं करके कहिंदे वी वेख की लिखिया होया भला। कहिंदा जी अक्खर पुठे सिद्धे जे आ, पता नहीं लग रहा। पातशाह जी ने की कीता भी ओही स्टैंप मोर साई नाल भिओं के एक कागज ते लाती। कहिंदे हुण देख भलांदी। कहिंदा जी हुण तां दूरों ही पता लगी जांदा ना। कहिंदे भी हुण तां अक्खर सिद्धे हो गए, हुण तां पढ़े जांदे आ। पातशाह जी कहिंदे इसे तरह जदों कोई गुरु दे दर ते सिदक दा सजदा करदा ना, भावना ते प्रतीत नाल झुकदा किते आण के, पुठी तकदीर सिद्धी हो जांदी आ गुरु नूं भावना नाल मत्था टेकिया, खाली झोलियां भर जांदियां ने। भागां वाले हो जो संगत दे विच पहुंचे हो, जिथे तन करके बैठे हाँ किते साड़ी मन करके भी हाजरी लग जाए, कन्ना नाल सुने हुए बोल किते साड़े मन तक पहुंच जान। आओ विचारां दी आरंभता तो पहला मन दी एकाग्रता लई एक बार समूह संगत प्रेम नाल हाजरी लवायो ते आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। एक बार फिर करो कृपा जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। चरण कमल राज मस्तक लेपन कै

जो पाव है मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अंबर बोकाता जी, तू जेवड़िया ना कोई, तू जो जो एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तुझे आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करे सो होई, तुझे आपे सिष्ट सब उपाय जी, तुझे आपे सिज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियान मैडा साई, जो तू पवे सोई तिसी, जो तू दे सोई हूं पाई रहा, सब तेरी दुश्मनी त्याया, जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मर्म गवाया, तुदी आप छोड़िया आ मिलाया, तुंदरी आस तुझी माए, तुझ में दूजा कोई नाहे, जी अजंत सब तेरा खेला, बिंजो मिल विछड़िया संजोगी मेला, जिसनों तो जाना है सोई जन जाना है, हर गुण सदी आह बखाना है, जिन हर सिव्या तिन सु पाया, सहज ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सबोए, तुझ बिन दूजा वरना कोई, तू कर कर देखा जाना सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट हो, आसा महला पहला, तेत सरल पहले निवासा, पानी पावक तने किया, पंक जो मोह पगनी चाला, हम देखा ते डूबी अले, मन एक न चित समूढ़ मना, हर बिसरा तेरे गुण गलिया रहा, ना हो जति छति नी पड़िया, मूर्ख मुदा जन्म पया, पनुत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाई बिसरिया, आसा महला पजवा, पई प्रात मान कुदेहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर का तेरा कितना काम, मिल सा संत पंज केवल नाम, सन जान लाग पवजल तन कै, जन्म वृत्ता जात रंग माया के रहा, जत संजन तन में कमाया, शिवा साधना जन्य राया, कहो नानक अम नीच करमा, सरन परे की राखो शर्मा, कहो नानक अम नीच करमा, सरन परे की राखो शर्मा, कभियो बाज बेंती चौपई, हमरी करो हाथ दे रचा, पूर्ण होए चिरकी इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतबारा, हमरे दुष्सभ तो काव हो, आप हाथ दे मोहि बचाव हो, सुखी बसे मोर परवारा, सेवक सिख सभे करता रहा, मोर चानिज कर दे करिया, सब भैरन को आसंगरिया, पूर्ण हो हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा।

क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब विच है। जिस देह सो पावे सदा सिलसिला तेरी, नाम मन बसावे नाम जिनके मन बसिया, वाजे शब्द कनेरे

गुरु की पावन हजूरी अंदर बड़े अदब सहित हाजिरी भर रही गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी ने हुणे हुणे भाई साहब भाई कमल जीत सिंह जी रबाबी हजूरी कीर्तनीय सचखंड श्री दरबार साहब उन्हां पासों अमृतमई कीर्तन सरवण किया है। भाई साहब होरां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सो हुण समा होया है हफ्तावारी सिमरन साधना दा। गुरमुख प्यारे हर हफ्ते आप संगत की सेवा विच हाजिर होकर आप जी नूं गुरमंत्र द्वारा गुरु की अमृतमई बाणी द्वारा गुरु चरणां नाल जोड़न की सेवा निभाउंदे ने। आओ हुण एकाग्र चित हो के सिमरन विच हाजरी भरीए। सतगुरु पंचम गुरदेव शहीदां दे सरताज साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जी दे शहीदी पुरब नूं समर्पित 18 जून तक अमृत वेले सवेरे 4 बजे तो 5:30 बजे तक संगती रूप में सुखनी साहब जी की बाणी के पाठ होंगे ने। आप जी अमृत वेले हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर सकते हो। आओ कीर्तन सरवण करिए जी, सिमरन साधना विच हाजरी भरीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।